अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा

0: Roll camera and action!
1: अरे वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन, बाल की शूटिंग हमारे बगैर?
4: तेरी मां दिया फेरे कुड़ी, मोड़ने चाहिए तो कैसे?